0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: यार तू चिल कर, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? आई लव यू अ लॉट और मैं चाहता हूँ कि तू मेरी फैमिली को मिले. और जब तू आएगी, दे आर वेरी कूल, दे आर सो प्रोग्रेसिव. बस एक इंडियन आउटफिट पहन के आना. हाँ, पहली बार लाइक फर्स्ट इंप्रेशन में उन्हें लगना चाहिए कि क्या इतनी सही बंदी है, सो देसी. एंड आई एम लाइक, तू तो कह रहा था तेरे फैमिली मेम्बर्स काफ़ी कूल है, तो मैं जीन्स और शर्ट पहन के आ जाऊँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है. इट्स जस्ट दैट तू ज़्यादा सुंदर लगती है. तू ज़्यादा सुंदर लगती है, सलवार कमीज पहनेगी तो ज़्यादा सुंदर लगेगी. एंड आई जस्ट वॉन्ट देम टू नो कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को डेट कर रहा हूँ. एंड आई एम लाइक, अबे ओ रेड फ्लैग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग योर पेरेंट्स और यू एनी मोर. यू नो, जब बंदे आपसे ऐसी बातें करते हैं ना कि यार तू थोड़ा सा ना अपने कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज कर थोड़ा सा, या फिर दे टेल यू कि ये जो तेरे दांतों में
3: yeah,

0: Energy.
1: Escabana, puscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. Na vida la burga. Mirchi, burga.
2: Hello?
3: Hi. You... से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका

0: को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो,
0: हाय, ये Hello? फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए, तो दबाइए 4,19,83,93।
2: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार, अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं, आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका
1: वही मैं सुन रहा था, मतलब लगा।
0: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया
1: जी।
0: कुकड़ों को
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: एक पार्टी में जाकर जस्ट फॉर अ लाख आपने झूठ बोला दैट यू आर अ प्रोफेशनल पोल डांसर, यू लैंडेड अ रियली ग्रेट गिग विद दिस गर्ल, हैड अ ग्रेट टाइम एट नाइट, और अब वो आपको कह रही कि अपनी पार्टी में तू प्रोफेशनल पोल डांसिंग करके दिखा. वेरी गुड, इट सर्व्स यू जस्ट राइट.
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: So now you kind of know that it's the time for the secret box. आपके पास अगर कोई अपने dirty confessions है to share with me, wash your dirty linen with me. Anyway, you know what to do. मेरे पास है आपको सुनने के लिए non-judgmental कान मेरी जान. मेरे साथ है मेरी mystery caller. Hi mystery caller.
4: Hello.
2: How are you?
4: Yeah. I'm good.
2: It's like अच्छा ठीक है, मैंने सवाल पूछा mic लेकर and you're like yeah. अब मैं आपको बता दूँ मेरा confession क्या है. क्या है आपका confession? Naughty girl.
4: हाँ, सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज ना, उससे पहले भी आई डिडंट रियली सी एनी वैल्यू इन डेटिंग समवन एंड ऑल.

0: बट देन आई वेंट टू कॉलेज और मैं जहां जा रही थी सब डेट करे जा रहे थे किसी को, ऐसे हम बैठ के ट्रॉमा बॉन्डिंग भी कर रहे होते थे, तो सब मेरे बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया, मेरा बॉयफ्रेंड कुत्ता है पूरे टाइम ये होता, और मैं ऐसे थी यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए. तो फिर आई
1: करेक्ट.
0: वॉज, मैं एक पॉइंट पे ये भी था, मैं रूम पे भी जा रही होती थी ना, सारी बंदियां फोन उठा के एक पॉइंट पे अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी,
1: हाँ.
0: और मुझे बिल्कुल मन नहीं था, बट मैंने कहा यार इवन आई नीड टू गेट दिस नाउ.
1: राइट, टॉय
0: तो
1: है सबके
0: मैंने,
1: पास है, मुझे भी चाहिए.
0: हाँ ऐसे मैं किससे
1: हाँ
0: बात करूँ रात में.
1: हाँ
0: तो फिर मैंने बहुत सारी डेटिंग प्रोफाइल्स डाउनलोड करी,
1: हाँ
0: मैंने एक बंदे के साथ मैच आज हुआ, सब हुआ, वी स्टार्टेड डेटिंग एंड दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ. दो
1: ओके
0: साल खराब हो गए मेरी जिंदगी के कॉलेज के. सो देन
1: बेचारी.
0: नाउ आई फाइनली डिसाइडेड
1: हाँ.
0: दैट दिस डजंट मैटर, सो नाउ आई एम इन माय होप फेज एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग.
1: ओके, एक सेकंड. फॉर ऑल दोज पीपल जिन्हें नहीं पता कि आपने ये प्यार से जो भी क्या बोल दिया, उस फेज में आप बेसिकली हुकअप करते हो, लव एंड रोमांस में आपको इंटरेस्ट नहीं है. नॉरी नॉरी हॉट हॉट इज व्हाट इंटरेस्ट यू, राइट? ओके, एंड हाउ इज दैट गोइंग फॉर यू? व्हाट्स योर काउंट सो फार, काउंटेस?
0: रियली नाइस. आई थिंक इट्स थ्री.
1: ओ, और तो अभी तीन ही हुए हैं ना. हमारे ऑफिस में एक बंदा काम करता था, एक दिन आया नया नया, एंड ही वाज लाइक, तो तेरा काउंट क्या है? एंड आई वाज लाइक, सॉरी, किस चीज का काउंट? कितने बर्गर्स, कितने सैंडविचेस? तो ऑब्वियसली, तो मैंने उससे पूछा कि लाइक हाउ मेनी वुमेन हैव यू बीन विद. तो ही इज लाइक, यार अभी तक 48. तो
0: ओह माय
1: आप,
0: गॉड.
1: दैट्स राइट, दैट्स राइट. तो आई थिंक कि उसे आपसे ज्यादा रोशिफिकेशन की जरूरत है, और शायद उसे एक डॉक्टर की भी जरूरत पड़ जाएगी एट दिस रेट. बट शैल आई रोशिफाई यू फॉर बीइंग सो ओपन एंड लिबरेटेड अबाउट योर लाइफ चॉइसेस? देयर यू गो माय डार्लिंग,
2: यू've बीन रोशिफाइड.
1: सो ये तीन का काउंट बहुत अच्छा है. अगर मैं आपकी मम्मी होती तो ये कहती कि बेटा इसे ना

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: काम डाउन माय भगजनो, आपने जब अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई की थी तब मुझसे पूछ के नहीं की थी, उसे झूठ बोला था, मुझसे पूछ कर नहीं बोला था, लेकिन अब जब आपके साथ वो कॉन्फ्रंटेशन करने वाली है एंड शी वांट्स यू टू शो अप इन पर्सन, माय ओनली सजेशन टू यू इज ब्लू कलर के कपड़े पहनकर जाना। जब भी किसी झगड़े में सामने वाले इंसान ने नीले रंग के कपड़े पहने होते हैं, दे एक्चुअली टेंड टू काम द एंटायर सीन डाउन। अर्थात जहां आपकी गर्लफ्रेंड 100% लाल पीला हो रही है, प्लीज पार्डन माय कलर पन, वहीं वो आपके ब्लू कपड़ों के आसपास आते ही कम से कम 40 डिग्री ठंडी हो जाएगी एंड शी विल बी लेस मैड एट यू। यू आर ऑलरेडी वेलकम फॉर दिस टिप। अगर आपको ऐसे ही पर्सनलाइज टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB, एंड व्हाइल यू डू दैट नॉरी बॉय कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have free life cycle.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal अर्थात फ्रैंक कैसल AKA पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: तेरी मम्मी की जय.

0: यार आई नो दिस इज गोना साउंड रियली क्रीपी ओके, बट मुझे ना ऑनेस्टली पहली बार मोहब्बत हुई है. इट्स नॉट अ फ्लिंग, इट्स नॉट अ हुकअप. द ओनली प्रॉब्लम है इसकी, जिस बंदी से मुझे प्यार हो गया ना, शी लुक्स अ लॉट लाइक माय मॉम. इजंट दैट अ बिट क्रीपी?
1: रोशी के डीएम से.
0: You are so cute, Akash. But let me tell you, आपको जो creepy लग रहा है ना, वो actually creepy नहीं है. Because according to psychology, we are attracted to people जो हमारे, if you are a guy, तो वो हमारी mom की तरह resemble करते हैं. या if you are a girl, then you'll be attracted to guy who has a lot in common with your dad. अब ये traits हो सकते हैं कि आपके dad की तरह behave करता है या आपकी mom की तरह behave करती है. या फिर ये ditto physical appearances हो सकते हैं. In fact, every time my brother has dated a girl, उन सब लड़कियों में एक चीज कॉमन है, उन सब की नाक मेरे जैसे लगती है. एंड करण गेट सो अपसेट बिकॉज ही इज लाइक, यार व्हाई एम आई रिपीटिंग दिस पैटर्न? एंड आई वाज लाइक, यार क्योंकि तुझे ऐसा लगता है दैट इफ यू डेट समवन हु रिमाइंड्स यू ऑफ योर सिस्टर इन सम वे, फिजिकली या इमोशनली या मेंटली, इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, बींग एबल टू ट्रस्ट अ पर्सन, क्योंकि फेमिलियरिटी है इतनी. सो डोंट गेट क्रीप्ड आउट आकाश, व्हाट यू आर फीलिंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. वी डू गेट अट्रैक्टेड टू पीपल हु रिमाइंड अस ऑफ आवर पेरेंट्स इन सम वे. आई नो इट साउंड्स रियली क्रेजी, बट ये सच है. सो जस्ट गो अहेड एंड एंजॉय बींग इन लव विद दिस पर्सन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. बस हाँ, मतलब अगर बहुत तेरी मम्मी जैसे लग रही है तो यू माइट हैव अ problem when you're getting intense and romantic, but I'm sure you'll figure a way around that. On that note, agar Akash ki tarah aapki bhi zindagi mein koi bahut hi ajeeb aur gareeb problem hai, feel free to hit me up on Insta ya FB and we will take care of it. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai Rochie. So now go ahead, do what you have to do, hit me up, lekin kahin mat jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर आप एक एक्स एफ बॉय हो और आपको अब सच्चा प्यार हो गया है एंड यू डोंट नो हाउ टू अप्रोच इंटीमेसी विद दिस वुमन बिकॉज फॉर यू अभी तक इट वाज जस्ट फन एंड गेम्स, लेकिन अब जब आप सेक्सुअली इंटीमेट हो गए विद योर पार्टनर यू वांटेड टू हैव मोर मीनिंग, देन माय सजेशन इज यू मेक इट फुल ऑफ शुगर एंड स्पाइस. सो आई टेल यू वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम. वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, मतलब उसे अच्छा लगता है हुकअप्स एंड वन नाइट स्टैंड्स एंड स्टफ लाइक दैट. वो सीरियस कमिटमेंट से काफी दूर रहता था टिल ही मेट दिस गर्ल हु इज 3 years younger, बट उसे ना फुल ऑन मोहब्बत हो गई. एंड ही वाज लाइक, मुझे समझ नहीं आ रहा बिकॉज मैं हर पैंतरा ट्राई कर चुका हूँ. व्हेन आई गेट नॉटी आई वांट दिस टू बी स्पेशल बट आई डोंट नो हाउ. एंड आई वाज टेलिंग हिम दैट ये शुगर एंड स्पाइस वाली ट्रिक ये है कि व्हेन यू आर गेटिंग नॉटी यू कैन मेक इट एज स्पाइसी एज एडवेंचरस एज रेसी एज यू वॉन्ट इट टू बी. लेकिन इस सब के होने से पहले और इसके होने के बाद जो मोमेंट्स है ना, अगर उसमें आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, आप एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, यू आर वॉचिंग आउट फॉर ईच अदर, लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग अ बाथ फॉर योर पार्टनर आफ्टर यू गेट नॉटी, ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना जो हम नहीं करते हैं व्हेन वी आर हुकिंग अप विद समवन और जस्ट सुपरफिशियली एंगेजिंग इन अ रिलेशनशिप, दीज आर द थिंग्स दैट ऐड द शुगर टू द स्पाइस. और जैसे ही आपके गेटिंग रोमांटिक एरिया में शुगर एंड स्पाइस दोनों होंगे, इट विल ऑटोमेटिकली forge a really meaningful deep connection with the two of you. Isse try karke dekho apne relationship mein, whether it's new or old, if you want it to be deep and meaningful, this is the only trick you will ever need. I promise you that. And isse try karne ke baad, don't forget to tell me about it on Insta ya FB. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. So go ahead and do whatever you have to do, lekin kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आ जाती है रिलेशनशिप में वो स्टेज यार व्हेन यू रन आउट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट और अगर ऐसा हो रहा है देन अपने एक्सेस के बारे में गॉसिप कर लो दैट विल कंप्लीटली बॉन्ड द टू ऑफ यू और अगर आप ऐसे ही बॉन्ड जेम्स बॉन्ड लगना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड मे बी आई बी एबल टू हेल्प यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE और मेरे साथ लाइन पर कविता है. हाय कवू.
3: हाय,
2: व्हाट इज अप?
3: आई एम गुड, हाउ आर यू?
2: आई एम सेक्सी एज ऑलवेज. आपसे बात करके फीलिंग इवन बेटर.
3: That's great.
2: अच्छा तो ग्रेट एक चीज नहीं है और वो आपका बॉयफ्रेंड है ना?
3: Right, absolutely.
2: क्या हो गया आपके बॉयफ्रेंड के साथ यार? यू सेड के फोन पे बताऊंगी, अब मैंने कर दिया फोन. हुआ क्या?
3: So basically, I have an issue with you know how he does not end up showering. Okay. So the thing is that I'm a big time OCD person.
2: मेरी तरह.
3: And it's not about everything being like, you know, organized, but everything needs to be like clean sort. So, you know,
2: right.
3: One thing like completely takes me is bad breath and body odor. So that's a complete no. My guy actually doesn't shower. Yeah.
2: मतलब कितने कितने दिन नहीं आता? एक एक दिन छोड़ के नहाता है कि like दो दो दिन निकल जाते हैं?
3: दो दिन. And I end up telling him like, please, you know, just go take a shower and then, you know, or spray some deo or do something about it, you know.
2: So
3: that's such a big turn off.
2: आप दोनों एक relationship में live in कर रहे हो या do you guys stay separate but just meet up for dates and stuff?
3: We're in a living.
2: Why don't you just like tell him कि baby थोड़ा सा bubble bath try करके देखते हैं ना आज?
3: Oh, that's a good idea.
2: पानी waste मत करना.
3: I'm going to take your first suggestion as well.
2: बांध दे उसे यार. Seriously, बांध दे.
3: I think I should go ahead and give him some good smelling soaps and all, you know, which is sort of make him go and take bath.
2: But एक और बहुत अच्छी चीज है. The one thing that men cannot resist is the idea of like getting naughty. ठीक है, मतलब एक बंदा हमेशा तैयार होता है and luckily that's a problem or not problem across the world. तो every time you think कि यार दो दिन हो गए बंदा नहाया नहीं है, tell him कि जानू मां, we should shower together. Say shower together and I think you'll just probably.
3: That's such a great idea. I think I have good three takeaways.
2: I think you do. और अगर मैंने आपको कुछ और कहा इसके बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि बनी मैं खुद ही जाके नहा लूंगी यार. Like we're talking about showering way too much. It was really nice.
3: You've completely sorted my problems. I think I'm going to do all of this now.
2: I am so glad आपसे बात.
3: There's going to be much more better smelling people around.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake, please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake, किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: തകർത്തിട്ടാ തീ തകർത്തിട്ടാ
1: തീ തകർത്തിട്ടാ

Calm down, my bhagjano. I have some very incredible relationship advice for you, especially on moments ke liye jab aap apne partner se jhagda kar rahe hote ho. This is a very incredible psychology trick that I learned through the various kinds of strange relationships I had, but this one really works papa ke saath at least. Aur ye maine bahut recently discover kiya hai. Agar aap ek argument mein ho, let's say with your boyfriend, your girlfriend, or even your parent or someone in office, aur aap जब वो चिल्ला रहे हैं और बिल्कुल ही उत्तेजित हैं, अपनी आवाज़ को काम और नॉर्मल डेसिबल पे रखेंगे, इट विल क्रिएट द इल्यूजन सामने वाले के दिमाग में भी दैट यू आर विनिंग द आर्ग्यूमेंट. तो अगर आप चाहते हो कि वो आर्ग्यूमेंट, नो मैटर किसके साथ है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉस, मम्मी, एनीथिंग, अपनी आवाज़ ऊंची मत करना. ट्राई दिस, 100% वर्क्स एवरी सिंगल टाइम. एंड वंस इट वर्क्स फॉर यू, थैंक यू बोलने के लिए, यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो व्हाइल यू फाइंड मी, डू व्हाट यू हैव टू डू, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: रोमांस एक ऐसी चीज है ना कि अगर तुमने डिसाइड कर लिया टू बी इन अ रिलेशनशिप देन इट्स अ लॉट लाइक अ बॉक्सिंग मैच और बॉक्सिंग मैच में एक दो मुक्के तो खाने ही पड़ते हैं और अगर तुम उन मुक्कों के लिए तैयार नहीं हो तो उस बॉक्सिंग मैच एके रिलेशनशिप में घुसने से पहले 180 बार सोच लिया करो। ये ज्ञान की अमेजिंग टिप्पणी आज मेरा भाई मेरी कजिन को फोन पर बता रहा था बिकॉज शी वॉज हैविंग सम रिलेशनशिप ट्रबल्स एंड शी सेड यार क्या करूँ मैं भैया ये वो और मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि करण क्या पीस ऑफ एडवाइस देगा बिकॉज करण इज नॉट द लव गुरु इन द हाउस आई एम। लेकिन उसे जब ये एडवाइस दी ना मैं काफ़ी शोक थी। आई वाज लाइक यार ये तो बहुत सजेशियस एडवाइस है और अगर आप भी ऐसे रिलेशनशिप में 5-6 मुक्के खा चुके हो ना और आपको बस किसी से बात करनी है वेंट करना है या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए व्हाई डोंट यू हिट मी अप आई बी सो हैप्पी टू टॉक टू यू। मेरा नाम है मिर्ची रोशी नाम की स्पेलिंग है ROCHIE सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू हिट मी अप लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: एक पार्टी में जाकर जस्ट फॉर अ लाख आपने झूठ बोला दैट यू आर अ प्रोफेशनल पोल डांसर, यू लैंडेड अ रियली ग्रेट गिग.

0: सो नाउ यू कैन नो दैट इट्स द टाइम फॉर द सीक्रेट बॉक्स. आपके पास अगर कोई अपने डर्टी कन्फेशंस है टू शेयर विद मी, वॉश योर डर्टी लिनन विद मी. एनीवे, यू नो व्हाट टू डू. मेरे पास है आपको सुनने के लिए नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाई मिस्ट्री कॉलर.
1: हेलो,
0: हाउ आर यू?
1: Yeah. I'm good.
0: It's like, अच्छा ठीक है, मैंने सवाल पूछा माइक लेकर एंड यू आर लाइक, या मैं आपको बता दूं मेरा कन्फेशन क्या है. क्या है आपका कन्फेशन? नॉटी गर्ल.
1: हाँ, सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज ना, उससे पहले भी आई डिडंट रियली सी एनी वैल्यू इन डेटिंग समवन एंड ऑल, बट देन आई वेंट टू कॉलेज और मैं जहाँ जा रही थी सब डेट करे जा रहे थे किसी को. ऐसे हम बैठ के ट्रॉमा बॉन्डिंग भी कर रहे होते थे तो सब, मेरे बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया, मेरा बॉयफ्रेंड कुत्ता है, पूरा टाइम ये होता. और मैं सोचती यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए. तो फिर आई वाज, मैं एक पॉइंट पे ये भी था, मैं रूम पे भी जा रही होती थी ना, सारी बंदियां फोन उठा के एक पॉइंट पे अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी और मुझे बिल्कुल मन नहीं था. बट मैंने कहा यार इवन आई नीड टू गेट दिस नाउ.
0: राइट, तो है सबके पास है, मुझे भी चाहिए.
1: तो फिर मैंने बहुत सारी डेटिंग प्रोफाइल्स डाउनलोड करी. मैंने एक बंदे के साथ मैच आज हुआ, सब हुआ. वी स्टार्टेड डेटिंग एंड दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ.
0: ओके,
1: दो साल खराब हो गए जिंदगी के कॉलेज के. सो देन
0: बेचारी,
1: नाउ आई फाइनली डिसाइडेड दैट दिस डजंट मैटर, सो नाउ आई एम इन माय होप फेज. And I think it's amazing.
0: Okay. Okay. एक second. Yeah. For all those people जिन्हें नहीं पता कि आपने ये प्यार से जो भी क्या बोल दिया, उस phase में आप basically hookup करते हो. Love and romance में आपको interest नहीं है. Naughty naughty, hot hot is what interests you, right?
1: Yeah.
0: Okay. And how's that going for you? What's your count so far,
1: it's
0: countess?
1: Really nice. I think it's 3.
0: तो अभी 3 ही हुए ना. हमारे ऑफिस में एक बंदा काम करता था, एक दिन आया नया एंड ही वाज लाइक, तो तेरा काउंट क्या है? एंड आई वाज लाइक, सॉरी किस चीज का काउंट? कितने बर्गर्स, कितने सैंडविचेस? तो ऑब्वियसली, तो मैंने उससे पूछा कि लाइक हाउ मेनी वुमेन हैव यू बीन विद. तो ही इज लाइक, यार अभी तक 48. तो That's right. तो आई थिंक कि उसे आपसे ज्यादा रोशिफिकेशन की जरूरत है और शायद उसे एक डॉक्टर की भी जरूरत पड़ जाएगी एट दिस रेट. बट शैल आई रोशिफाई यू फॉर बीइंग सो ओपन एंड लिबरेटेड अबाउट योर लाइफ चॉइसेस? देयर यू गो माय डार्लिंग,
2: यू've बीन रोशिफाइड.
0: सो ये 3 का काउंट बहुत अच्छा है. अगर मैं आपकी मम्मी होती तो ये कहती कि बेटा इसे ना सिंगल डिजिट में ही रखना, ठीक है?
1: Done.
0: बोल भी रही है done, यार. Live your life, do whatever you want to do. और अगर आपकी भी जिंदगी में मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह एक सॉलिड काउंट है, which is not in single digits but in double digits, why don't you hit me up? I wanna know all about it. Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batlow, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

की बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आज मुझे इत्तफाकन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान मिला. मैं एक इंटरव्यू करने गई थी और उस इंटरव्यू के दौरान इस इंसान और मेरे बीच में बातें होने लगीं और उसने मुझसे ये कहा कि जब हम किसी सामने वाले इंसान के साथ वल्नरेबल होते हैं, खोलकर अपने दिल की बात कहते हैं, जब हम सच्चे होते हैं, जब हमारे अंदर कोई झूठ नहीं होता और हम एक्चुअली जैसे हैं वैसे ही प्रेजेंट होते हैं, तो उससे बड़ी स्ट्रेंथ और कोई नहीं है. एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड, तुझे पता है ना कि दुनिया में अक्सर लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप वल्नरेबल हैं तो आप वीक हैं. ही सेड, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल उल्टा है. अगर आप वल्नरेबल हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ है कि इस दुनिया ने आपको इतना कठोर नहीं बनाया कि आपके दिल में अभी भी प्यार के लिए, फीलिंग्स के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत सारी जगह बाकी है. ये कॉन्वर्सेशन मैं शायद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाली हूँ. एक रैंडम स्ट्रेंजर ने मुझे एक ऐसी बात कह दी जिसे कहकर अभी मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं. ये रैंडम स्ट्रेंजर शायद अब कभी भी मेरे लिए एक रैंडम स्ट्रेंजर नहीं रहेगा. मे बी उस कॉन्वर्सेशन ने हमें ज़िंदगी भर के लिए दोस्त बना दिया है. और शायद दोस्ती ऐसे ही होती है. तो अगर आप कभी किसी स्ट्रेंजर को मिलो ना और आपको ज़िंदगी में मौका मिले टू बी ऑनेस्ट योर रियल सेल्फ, तो मे बी यू शुड गिव इट अ चांस. क्योंकि अगर प्यार नहीं तो बहुत खूबसूरत दोस्ती तो हो ही जाएगी. ऑन दैट नोट, अगर आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE. सो डू वट एवर यू हैव टू डू. पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिसके पास लव है उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go!
2: हर फ्राइडे बॉलीवुड के लिए इज अ न्यू स्टार्ट, एक नई कहानी, लेकिन हर कहानी नई याद बन के नहीं रहती, और शायद इसलिए आज हम एक अजीब ईरा में जी रहे हैं। फिल्में भी वापस आ रही हैं, कैरेक्टर्स भी वापस आ रहे हैं, सॉन्ग्स भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को भी पता है यादें बनाना उन्हें दोबारा बेचने से कई ज्यादा मुश्किल होता है। अगस्त शायद इसी सवाल का जवाब लेकर आ रहा है। यू गॉट टॉक्सिक, यू गॉट आवारापन, यू गॉट बंटवारा 1947, तो क्या 2026 सिर्फ हिट्स देगा या फिर हमें कुछ ऐसी फिल्में और गाने भी देगा जिनके बारे में हम 10 साल बाद भी बात करेंगे। इसी होप के साथ वेलकम टू द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन, एंड आई एम सुरेन सुंदरम
0: नंबर 20।

0: a banger by Jasmine Sandlers. On number 20, Dhurandhar. Aur number 19 par debut kar raha hai, Aankhon Se Tune Ye Kya Keh Diya. एक ऐसे गाने का रीमेक, इसके ओरिजिनल वर्जन को किसी मेकओवर की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और मजेदार बात यह है कि ये जो फिल्म है भाई तेरा स्टार है, उसके अंदर हीरो राघव जुयाल डायरेक्टर से खुद पूछते हैं, क्लासिक गाना रीमेक क्यों कर रहे हो? और जवाब मिलता है, रिकॉल वैल्यू। बस अफसोस इतना सा है, रिकॉल तो सिर्फ ओरिजिनल का रह जाएगा, नया वर्जन सिर्फ उसकी डीजे मिक्स कॉपी बन के रह जाएगी। फिर भी काउंटडाउन पर उसकी जगह बन रही है। दिस इज आंखों से तूने क्या कह दिया फ्रॉम भाई तेरा स्टार है, स्टारिंग राघव जुयाल। इस हफ्ते गाना नंबर 19।
1: नंबर 19।

0: you wanna play? Fall in line, little boy. Cause you can't run away. There's nowhere to hide. There's nowhere to go. I've shattered the ceiling. There's blood on the floor. A fight to the finish. Or a kiss goodbye. Get your last wish, baby. Cause you're gonna die.
1: Have you noticed?
2: जब जज्बात बहुत बड़े हो जाते हैं तो लोग बोलना कम कर देते हैं, गाने चला देते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी आवाजें सुनी, बहुत सारे नारे सुने, लेकिन एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। हर जगह वही तीन गाने सबको सुनाई दे रहे थे, एक जो इस देश की पहचान बन गया है,

दूसरा जॉब हर मुश्किल घड़ी में इस देश को मोटिवेट करता है। और फिर ये तीसरा और आखिरी गाना जो अपने अंदर की आवाज को झंझोड़ता है। सोचिए, ये तीनों गाने आज के नहीं है, दो दशक से ज्यादा पुराने हैं। फिर भी जब इस जेनरेशन को अपनी फीलिंग्स को आवाज देनी थी, इन्होंने कोई नया गाना नहीं ढूंढा, वापस इन्हीं गानों तक लौटाए। एक बार जो गाना आवाज बन गया, उस आवाज को दबाना मुश्किल होता है। हर जेनरेशन उन्हीं गानों को अपना लेती है जो उनके इमोशंस को उनसे बेहतर समझ ले। इस हफ्ते मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक एआर रहमान की वो कॉम्पोजिशन जिसने हर बार एक नई जेनरेशन के साथ फिर से जन्म लिया, फिर से उस पीढ़ी की आवाज बनी। टॉप 20 रीवाइंड।

0: बस यही तो कमाल है हिंदी फिल्म म्यूजिक का। कुछ सेकंड पहले तक आरी आरी जैसे गानों के साथ खून तेजी से दौड़ रहा होता है, आपके अंदर इतना एड्रेनलिन भर जाता है कि लगता है कि दुनिया जीत लोगे, और अगले ही पल अगला ही गाना उसी दिल को धीरे से पकड़ लेता है, और आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिछले हफ्ते मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आवारापन का वो गाना जिसका इंतजार सिर्फ फिल्म के फैंस नहीं पूरा म्यूजिक सर्किट कर रहा था, इस हफ्ते वो काउंटडाउन पर जरूर डेब्यू करेगा। तो बस प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले आई नीड टू से दिस दैट आई लव अमाल मलिक। ही इज लाइक माय यंगर ब्रदर, और अमाल की कही हुई एक बात मेड मी फील सो सो प्राउड अबाउट हिम।
1: I'm the SRK of music and romance, who I believe another who soul travels just like me is Mithun. I think an art like mere senior hai, but he's the only one I feel. Yani main har jagah sab bolta hu, yani egoistically nahi ki I'm the SRK of music and romance mein main hu, so I believe the best. But someone who always hum log mein ek yani competition nahi rahega, but I think someone who touches my soul on that level is him. Wo utni purity se he also works. So we are the only two people who are trying to do in our generation purest work.
0: यार कितनी खूबसूरत बात है। हर कंपोजर का अपना एक सिग्नेचर होता है, अपनी एक मेलेडी होती है, अपना एक इमोशन होता है, और जब एक कंपोजर दूसरे कंपोजर की सोच को इतनी इज्जत दे

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट गाना।

शरारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या है? मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज नहीं, उसका मुखड़ा भी नहीं। इस गाने की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रेंथ है उसके वो पहले कुछ सेकंड्स, जहाँ गाना बस शुरू होता है और आपका दिमाग तुरंत बोलता है, ओह यस, दिस इज शरारत।

Am I right or am I right? यार मुझे लगता है कि म्यूजिक की दुनिया चुपचाप बदल रही है। आज गाने का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका हुक बन गया है, क्योंकि वही रील्स पर और शॉर्ट्स पर ट्रेंड करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, द कंपोजर्स गाने में सबसे ज्यादा प्यार उसकी शुरुआत पर खर्च करते थे। एक इंट्रो जो बिना एक भी लफ्ज बोले अपनी पहचान बना लेता था।

बस इतना ही, ना वोकल्स ना लिरिक्स। फिर भी अगर आप 2008 में थे तो आपको पता था हाथू है। शायद इसलिए कुछ इंट्रोस सिर्फ म्यूजिक नहीं होते, वो मेमोरी के फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। एक बार सुन लो और सालों बाद भी इसे पहचानने में कभी गलती नहीं होगी। वैसे ही इस हफ्ते नंबर 4 पर जो गाना है उसकी पहचान भी उसका इंट्रो ही था, चुनरी चुनरी। लेकिन जिस गाने की हम इतनी बात कर चुके हैं, जिस गाने का मैं इतना जिक्र कर चुका हूं, दैट इज गोइंग टू बी माय पिक ऑफ द वीक। जन्नत की पूरी एल्बम में शायद सबसे अंडररेटेड ट्रैक, लेकिन मेरे लिए सबसे प्यारा। वही इंट्रो जो दिल पर अब भी दस्तक दे रहा है, सॉन्ग बाय माय ऑल टाइम फेवरेट सिंगर के प्रीतम दा की धुन। हाँ तू है।

और दूसरी हिट फिल्म का सीक्वल आ चुका है वेलकम धमाल दे दे प्यार दे. देन यू आल्सो गॉट सम कल्ट क्लासिक्स लाइक बॉर्डर एंड गदर. एंड लगता है कि बॉलीवुड को एक ही चीज का नशा है एंड दैट इज फ्रेंचाइजेस. लेकिन इतने सारे सीक्वल्स के बीच एक नाम है जिसकी कमी हर साल और ज्यादा महसूस होती है और छुपती है. धूम जैसे फिल्म कहां थी, ये स्टाइल था, एटीट्यूड था. पहली धूम में जॉन अब्राहम ने बाइक्स को कूल नहीं बनाया, उन्हें एस्पिरेशनल बना दिया. सबको एक सुपर बाइक चाहिए थी. फिर आए ऋतिक रोशन और धूम 2 ने फ्रेंचाइज को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया. डूड ऋतिक नेवर लुक्ड एज सेक्सी एज ही डिड इन धूम 2. एंड उसके बाद 7 साल बाद सिर्फ खामोशी. यस, आमिर खान की धूम 3 आई जरूर, लेकिन वो दीवानगी वापस नहीं आई. और हाल फिलहाल आप सुन रहे होंगे कि इस सीरीज को रीबूट करने की प्लानिंग चल रही है. रणबीर कपूर का नाम डिस्कस हो रहा है. फिर ये पता लगता है दैट स्क्रिप्ट की वजह से रणबीर भी एग्जिट कर गए. सच कहूं मुझे नए विलन की बिल्कुल फिक्र नहीं है. मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जिस फ्रेंचाइज ने हिंदी सिनेमा को इतना स्वैग और इतना कूल दिया, उसे सिर्फ कमबैक नहीं, ब्लॉकबस्टर कमबैक मिलना चाहिए. सो YRF, टेक योर टाइम, जितना वक्त लेना है आप ले लो, बस धूम को स्पाई यूनिवर्स वाले रास्ते ना ले जाना. तब तक YRF का दिया एक और सुपरस्टार जिसने शुरुआत की थी विद बैंड बाजा बारात, आज बॉक्स ऑफिस पर सबकी बैंड बजा रहा है. एक बार फिर माय मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ लास्ट ईयर, इट्स स्टिल नंबर 1. दिस इज गहरा हुआ स्टारिंग रणवीर धुरंधर सिंह. नंबर 1.

0: एक और हफ्ता और गैरा हुआ फिर से नंबर वन। सच कहूं लगता ही नहीं कि धुरंधर का मैजिक बिल्कुल फेड हुआ है। इस एपिसोड में वैसे मुझे बहुत मजा आया, मेमोरीज की बात की, नई ट्यून्स की बात की और उन कहानियों की भी जो सिर्फ फिल्मों में नहीं हम सबके अंदर रहती हैं। आई होप यू लाइक द एपिसोड एज वेल। अगली बार फिर मिलेंगे हियर ऑन द मिर्ची टॉक 20। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Cadence, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeeturaj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुझे लगता है हर किसी के अंदर एक बावर्ची होता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। और सबने ना कभी कुछ ना कुछ तो कुक किया होता है, फिर चाहे वो हॉस्टल में तुम्हारे 2 मिनट नूडल्स हो या फिर चाय। तो हम सब कहीं ना कहीं तो बावर्ची होते ही हैं। इसी टाइटल को रखकर ऋषिकेश दा ने उस जमाने की एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म बनाई विद राजेश खन्ना एस बावर्ची एंड जया बच्चन जी। इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, एके हंगल साहब, असरानी साहब, दुर्गा खोटे। तो आज ना इसी मूवी की कहानियां बताऊंगी जो कि मैं कुक नहीं करके आई हूँ, वो सच में ये खट्टी मीठी किस्से एक्चुअली में ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म हुए थे। शुरुआत करेंगे फिल्म की कास्ट और क्रेडिट से। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इससे पहले तक किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना ऋषिकेश दा, राजेश खन्ना, जया भादुड़ी जी की फिल्म बावर्ची की बात हो रही है। आपको पता है इससे पहले किसी भी इंडियन फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था कि कास्ट और क्रेडिट को ना दिखाया जाए। हर फिल्म में जैसे क्रेडिट दिए जाते हैं ना, ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें क्रेडिट्स फिल्म के शुरुआत में नहीं दिए गए। फिर क्या किया गया, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो पता होगा, और अगर नहीं देखी है या फिर बहुत पहले देखी थी तो मैं याद दिलाऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये यूनिक आइडिया फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश दा का था। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची, जो कि ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। राजेश खन्ना थे, जया बच्चन थी और भी बहुत सारे एक्टर्स थे। अब इस फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ कि क्रेडिट्स नहीं दिए गए, यानी देयर वर नो टाइटल कार्ड्स। तो फिर क्या किया गया था, इसमें अमिताभ बच्चन जी के वॉइस ओवर ने हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था और ये यूनिक आइडिया पहली बार किसी फिल्म में देखा गया था। अच्छा, अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में से क्यों उन्होंने टाइम निकाला, ये अभी बताऊंगी श्रेया के साथ। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतूराज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव फ्री लाइफ साइकिल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batlló, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है, क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने, वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

टाइटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट ये पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। इट वॉज द फिनोमिनल ऋषिकेश मुखर्जी जिन्होंने ये सोचा भी और अपनी फिल्म बावर्ची में किया भी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही थी द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची की, ऋषिकेश दा की डायरेक्टेड, जिसमें बावर्ची बने थे राजेश खन्ना, उनकी लव इंटरेस्ट बनी थी जया बच्चन जी। और इस फिल्म में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कास्ट एंड क्रू के नाम नहीं दिए गए थे, बल्कि एक बहुत यूनिक आइडिया सोचा ऋषिकेश दा ने, एंड दैट वाज कि हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर यूज किया गया। अब अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, तो ऋषिकेश दा उनसे ये फेवर मांगने में थोड़ा कतरा रहे थे। उन्होंने जया जी से वाइल्ड शूटिंग द फिल्म ऐसे ही मुस्कुरा के बात बात में कह दिया कि काश अमित ये काम कर पाता। ये बात जया जी ने घर जा करके अमित जी को डिनर पे बताई। अमिताभ बच्चन और जया जी के लिए ऋषिकेश दा फादरली फिगर थे, हमेशा से एक बड़े भाई थे। जैसे ही अमित जी ने ये बात सुनी, वो ऋषिकेश दा के घर पहुंच गए और उनसे नाराज होके कहा, दादा ये बात आप मुझसे आके नहीं कह सकते थे, आपको जया की जरूरत पड़ी इसके लिए। ऋषिकेश दा ने मुस्कुरा दिया और उसके बाद तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। पुरानी जीन्स पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, तो बस वापस आओ श्रेया के साथ।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ना ये दोनों डेटिंग फेज में थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी बावर्ची की थोड़ी देर पहले। तो इस फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन और जया जी ना एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, वो प्यार में धीरे धीरे पड़ रहे थे। तो क्या होता था कि अमित जी जया जी को मिलने फिल्म के सेट पे जाते थे। अब सेट पे तो उनको उस टाइम के सुपरस्टार काका यानी राजेश खन्ना भी मिलते थे, जिन्हें अमिताभ बच्चन थोड़े अखरते थे। अच्छा, काका उस टाइम पे अपने स्टारडम के खुमार में भी थे। अमिताभ बच्चन बिजी जरूर थे, उनके पास फिल्में बहुत थीं, लेकिन जनरली उनकी फिल्में इतनी खास चल नहीं रही थी। ऐसे में काका उनको ताने मारा करते थे, रिमार्क्स पास किया करते थे। क्या अमिताभ बच्चन को गुस्सा आया या फिर उनकी तब की गर्लफ्रेंड जया जी को, बताऊंगी थोड़े से गानों के बाद। मुझे बहुत मजा आता है आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में, क्योंकि फिर मुझे यकीन होता है कि आप वापस यहाँ होंगे। सो कम राइट बैक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

काका बोले तो राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन जी को बहुत सारे ताने मारते थे। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है ऋषिकेश दास द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। तो मैं कहाँ पे छोड़ के गई थी बात? हाँ, मैं ये बता रही थी कि ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन एंड जया जी वर डेटिंग। वो एक दूसरे को मिल रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, धीरे धीरे प्यार में पड़ रहे थे। तो अमित जी के पास बड़ी सारी फिल्में थी, वो बिजी भी थे लेकिन उनकी फिल्में इतनी चल नहीं रही थी। ऐसे में द सुपर सक्सेसफुल राजेश खन्ना जब उनको सेट पे देखते तो ऑफकोर्स उन्हें वो कॉम्पिटिशन लगते और वो उनको बहुत सारे ताने मारते। अमिताभ बच्चन भी सुन लेते, जया बच्चन भी सुन लेती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब काका ने एक बहुत ही खराब शब्द कहा। इस शब्द को सुन करके जया जी का सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने काका को जाकर के उनके कान में एक ऐसी बात बोली जिसके बाद से उन्होंने कभी भी अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं कहा। वो शब्द क्या था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: मनहूस, ये कह के बुलाया था काका ने अमिताभ बच्चन जी को। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है बावर्ची फिल्म की। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश दा, फिल्म के मेन लीड राजेश खन्ना और फिल्म की हीरोइन जया बच्चन। ये वो टाइम था जब जया बच्चन जया बहादुरी थी और अमिताभ बच्चन बहुत सारी फिल्में कर रहे थे लेकिन उनकी फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, वो फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी एक के बाद एक। ये वो टाइम था जब जया जी और अमिताभ बच्चन प्यार करने लगे थे एक दूसरे से, तो अमित जी ना बावर्ची के सेट पे उनसे मिलने जाते थे और हाँ ऋषिकेश दा तो उनके दोस्त ही थे। ऐसे में राजेश खन्ना को बहुत अखरते थे। राजेश खन्ना चलते फिरते अमिताभ बच्चन को कोई ना कोई ताना मार ही देते थे। पर एक दिन ऐसा आया जब जया जी के सब्र का बांध टूट गया और वो था जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को कहा, मनहूस, तुम मनहूस हो, जिस भी फिल्म में जाते हो वो फ्लॉप हो जाती है। ये बात जया जी के दिल पे सीधे जाके चुभी। उनको इतना गुस्सा आया कि अमित जी उन्हें चाय पे वापस बैठाते रहे, बैठ जाओ, छोड़ो, जाने दो। जया जी गुस्से में उठी, राजेश खन्ना के पास गई और उनके कान में कहा, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी कि ये आदमी क्या बनेगा और आप क्या रह जाएंगे। इस एक लाइन के बाद वो वापस आके चाय पीने लगी एंड आफ्टर दिस काका ने अमिताभ बच्चन को कभी ताना नहीं मारा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और भी किस्से हैं उस जमाने के, तो गाने सुन करके यहीं वापस आने।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: पर साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
2: Hi, my name is Peter Parker।
3: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। and for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
4: Spiders have three life cycles।
3: I just can't begin to tell you। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है, यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is। Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different। In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है, क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, AKA Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day, but I must give you a disclaimer। अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने, वो क्या है। ओके, आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा एक और चीज में ये फिल्म बावर्ची खास थी, पुरानी जीन्स पर। हाय मेरा नाम है श्रेया और आज मूवी बावर्ची की बात कर रहे हैं। राजेश खन्ना, जया बच्चन एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। राजेश खन्ना यानी काका उस टाइम पे ना सुपरस्टार थे, बल्कि कहा जाता है कि इंडिया के वो फर्स्ट सुपरस्टार थे। उनके साथ हर हीरोइन ने कई सारी फिल्मों में काम किया था, फिर चाहे वो शर्मिला टैगोर हो, मुमताज जी हो, आशा पारेख हो, जीना तमान हो, तनुजा जी हो, ऑल ऑफ देम। लेकिन सिर्फ एक हीरोइन थी जो उस टाइम पे अपने स्टारडम के पीक पे थी, पर काका से थोड़ी दूरी बना के चलती थी। उन्होंने राजेश खन्ना के ऑपोजिट एज इज लव इंटरेस्ट सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया और वो थी बावर्ची। जया जी और राजेश खन्ना की ये रोमांटिकली पेयर अप होने वाली पहली और आखिरी फिल्म थी, इसीलिए है ना ये यूनिक फिल्म, क्योंकि ऋषिकेश दा इन दोनों को एक साथ ले आए थे इस पिक्चर में। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, वापस आओ, बातें तो अभी बहुत सारी बाकी हैं उस जमाने की।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक ऐसी फिल्म जिसने हमें जम करके हंसाया और बहुत सारे सीन्स में इमोशनल भी कर दिया, आज उसी की बात हो रही है, बावर्ची। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही हूँ ऋषिकेश दा द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। अच्छा, जो रेट्रो फैंस हैं उन्होंने डेफिनेटली ये फिल्म देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म में राजेश खन्ना बावर्ची बने थे, एक जॉइंट फैमिली के लिए खाना बनाया करते थे। पर अगर जब आप फिल्म देखोगे ना तो वो खाने से ज्यादा वो पूरी फैमिली का ख्याल रखते थे। सबके सीक्रेट्स भी इसी बावर्ची के पास होते हैं। जब ऋषिकेश दा ने ये अलग हट करके कैरेक्टर, एकदम अलग हट करके फिल्म काका को सुनाई ना, उन्हें बड़ा पसंद आया। सबसे ज्यादा एक्साइट उनको किया था बावर्ची की कॉस्ट्यूम, हाफ पैंट्स, एक शर्ट और सर पे टोपी। अब ये जो टोपी थी ना, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इस टोपी को दो वजहों से पहना था राजेश खन्ना ने, एंड वो दो रीजंस क्या थे? आहा, अब तो आप मुझे जान गए हो, ऐसे कहां बताती हूँ मैं आपको। ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में श्रेया को तो बड़ा मजा आता है, तो गाने सुन करके जल्दी से वापस आओ, फिर बताती हूँ इस टोपी के पीछे की कहानी। ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

लोगों को लगा कि ये टोपी राजेश खन्ना ने फिल्म के कॉस्ट्यूम के चक्कर में पहनी है, लेकिन इसका रीजन तो कुछ और ही था। हाय, मैं हूँ श्रेया और आप सुन रहे हैं मुझे पुरानी जीन्स पे, और आज बात हो रही है द फिनोमिनल फिल्म बावर्ची की। अच्छा, ऋषिकेश दास जब ये रोल लेकर के पहुंचे राजेश खन्ना के पास, तो उन्हें लगा था कि शायद काका मना कर दें, क्योंकि तब काका इमोशनल रोल्स तो कर रहे थे, लेकिन उनको साथ में अच्छा दिखना बहुत पसंद था, गुड लुक्स। सो राजेश खन्ना अपने कपड़ों को लेकर के, अपने कॉस्ट्यूम्स को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होते थे। जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में वो बावर्ची का रोल प्ले करेंगे और उन्हें एक बावर्ची जैसे कपड़े पहनने हैं, तो उन्होंने हामी भर दी। ऋषिकेश दा को बड़ा अचंभा हुआ। फिर राजेश खन्ना ने एक बात कही कि उनके सर से बावर्ची की टोपी, अगर आप देखो ना, एक पॉइंटेड सी टोपी पहने हैं वो, जिसे उन्होंने एक सेकंड के लिए भी फिल्म में नहीं उतारा। सो काका ने कहा कि इस पूरी फिल्म में वो ये टोपी पहने रहेंगे। तो ऋषिकेश दा ने आंखें छोटी करते हुए उनको शक की निगाहों से देखते हुए पूछा कि राजेश, तुम ये टोपी कॉस्ट्यूम के लिए पहनना चाहते हो या फिर कोई और रीजन है? काका ने मुस्कुरा के पता है क्या कहा? कि उनके बाल कम हो रहे हैं और टोपी की वजह से वो छिप जाएंगे। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, और भी बातें बताऊंगी ना, वापस तो आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषिकेश दाना बंगाली फिल्मों से बहुत इंस्पायर होते थे, बहुत इम्प्रेस होते थे और इसीलिए उनकी कई सारी फिल्में बंगाली फिल्म से ही इंस्पायर थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। बावर्ची की बात हो रही है। ऋषिकेश दा ने बनाई थी, राजेश खन्ना और जया बच्चन थी विद अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स। ए के हंगल थे, असरानी साहब थे, दुर्गा खोटे थी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि बावर्ची भी एक बंगाली फिल्म से इंस्पायर थी और इसका नाम था गोलपो होलियो सोटी। ये फिल्म तपन सिन्हा ने बनाई थी। बनी तो ये 1966 में थी, लेकिन जब ये ऋषिकेश मुखर्जी ने देखी थी उन्होंने तभी सोच लिया था कि वो ये फिल्म राजेश खन्ना के साथ हिंदी में बनाएंगे। पुरानी जीन्स पर आज इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी, तो श्रेया के साथ वापस आओ।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर मिर्ची
1: पर उसको साथ जीतू राज only on Mirchi it's hot
2: hi my name is Peter Parker
3: oh Kaden Spider-Man brand new day aa gayi hai and for god's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for god's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
4: spiders have free life cycle
3: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: तेरा क्या होगा कालिया
6: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
5: अब मिर्ची का
7: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

0: नई जीन्स पर आप हो श्रेया के साथ। मेरा जाने का टाइम तो हो गया है, पर आपको पता है ना मैं अकेले नहीं जाती हूँ। इस समय एक गाना चूज करके मैं और आप मिल करके हाईवे तक घूम के आते हैं। तो चलो गाड़ी में जल्दी से बैठो। तो आज का मेरा हाईवे हिट पहली मुलाकात पे, एंड स्पेशली जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलने वाले होते हो ना, तो वो जो एक्साइटमेंट होता है ना कि क्या बातें होंगी, वो मुझसे क्या कहेगा, मैं उससे क्या पूछूंगी, आगे कॉन्वर्सेशन कैसे बढ़ाएंगे, अच्छा हम कैसे लग रहे होंगे एक दूसरे को, ये सब सवाल होते हैं ना। तो आज उसी एक्साइटमेंट पे
1: आज उनसे पहली मुलाकात होगी।
0: यही गाना सुनते हुए चलते हैं। On that note, this is Shreya signing off. आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक और इंस्टा पे, RJ Shreya with love. ये है मेरा हैंडल, that's RJ SHREYA Shreya with love.

अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: Spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batchelor, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Cadence, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

mucho mejor paella. Con mola, con mola.

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची।
2: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांट्स में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभावपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आपने कभी सोचा है कि अधिकतर धार्मिक स्थल ऊंची जगहों पर ही क्यों बने होते हैं? आइए इसके पीछे छुपे अर्थ को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि जब इंसान सही रास्ते पे चलता है या जब वो असली अल्टीमेट ट्रूथ के खोज में निकलता है तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा आती हैं। इसलिए कहते हैं कि पुराने ज़माने में और शायद आज भी मंदिरें जो हैं, मस्जिद जो हैं, दरगाह जो है, चर्चेज, वो एकदम बाहर पहाड़ों पे, ऊंची-ऊंची पहाड़ों पे बनाए जाते हैं। तो बहुत मुश्किलों के बाद ही इंसान भगवान तक पहुँच पाता है, ये एक तरह से शायद सिग्निफाई करता है इसको। तो जब मुश्किलों का इतना सामना करना पड़ता है उसके बाद ही अल्टीमेट ट्रूथ मिलता है, भगवान ने इतना डिफिकल्ट क्यों बना रखा है इसको?
4: अल्टीमेट ट्रूथ फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअली इतनी डिफिकल्टी नहीं है। वो तो ऊंचे ऊंचे स्थानों पर मंदिर इसलिए बने क्योंकि वो ऊंची स्थिति का यादगार है। जो भी देवी देवताएं या जो भी हाँ, बिकॉज वो बहुत हाई हैं, तो हमने उनको पेडेस्टल पर बनाने के लिए बहुत ऊंची जगह पर बिठाया। बाकी कोई उसमें आपको कष्ट सहन करके ही वो चीज मिलेगी जो कभी कभी दिखाया जाता है। सी, एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे पेरेंट ही तो हैं। आप गॉड इज ट्रुथ कहें, जो गॉड है, जो परमात्मा है, तो पेरेंट से मुलाकात करने के लिए कोई इतना
3: कष्ट नहीं उठाना चाहिए।
4: इतना कष्ट उठाने की कोई बात ही नहीं है। कष्ट किसके अंदर है? अगर जो चैलेंज है वो है उसके ट्रुथ के पाथ पर चलने के, ट्रुथ तक पहुंचने के नहीं। उसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं होती। मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड व्हाट ट्रुथ इज, पर उस पाथ पर चलने के लिए आपको जैसे एक बाहर की युद्ध होती है, एक अंदर की युद्ध होती है। क्योंकि बहुत समय से आप जो उसका उल्टा है आपने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है, वो कंफर्टेबल है, उससे टेम्पररी बेनिफिट है, तो वो युद्ध, वो जो बैटल है, वो ज्यादा बहुत कश्मोकश जो है। हाँ। कि गुस्सा करें या ना करें, इच्छा रखें या ना रखें। हाँ। संतुष्ट हो या डिजायर्स हो, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो बैटल है, वो थोड़ी सी चैलेंजिंग है क्योंकि इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्लेंजिंग ना।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची 101.3।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: बाहरी सहारे से पहले खुद के अंदर फेथ होना इतना जरूरी क्यों होता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: बीमारी में सिस्टर क्या होता है कि हमारा शरीर है तो हम समझते हैं, हम देख रहे हैं कि भैया प्रभाव है या नहीं, लेकिन जहाँ तक फेथ की बात होती है, क्योंकि हम फेथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादातर जो मिलने वाली चीज़ होती है ना, वो हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते। ये एक्सपीरियंस है जो ओवर ए पीरियड टाइम हमको समझने में आता है। तो उस केस में क्या होता है, बाय द टाइम वी रियलाइज कि हम गलत पाथ पे निकल आए, शायद बहुत देरी हो जाती है या हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम तो उनके भरोसे निकले हैं, वो जहाँ ले जा रहे हैं हम जा रहे हैं, तो कैसे समझें।
4: नहीं, पता तो चलता है, समय लग सकता है। जैसे अभी आप डॉक्टर के पास भी तो फेथ से तो जाते हो
3: कि ठीक कर देंगे।
4: हाँ, कोई भी आप डॉक्टर के पास ऐसे थोड़ी ना जाते। आप कितने आपके गलत एक्सपीरियंसेस लोगों के होते हैं, तभी तो आजकल कहते हैं सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, पर आप जाते तो उसी फेथ से है ना, कि हम उसके सामने जाके सरेंडर होते हैं कि वो हमें ठीक कर देंगे। लेकिन फिर जर्नी में कई बार आपको एक्सपीरियंस होता है कि नहीं, ये तो गलत हो गया मेरे साथ। ऐसे ही आप किसी के ऊपर भी फेथ रखते हैं। आप कैसे फेथ रखते हैं, कम से कम 10 20 50 लोग आपको कहते हैं कि नहीं, हम जब इनके मत पर चले तो हमें बेनिफिट हुआ, हम इस हायर पावर से कनेक्ट हुए तो हमारे अंदर की बीमारी ठीक हुई। देखो, देयर इज नो अदर वे। आप किसी के पास भी कैसे जाते हैं, जब कई लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमें बेनिफिट हुआ, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। अल्टीमेटली आप अपने एक्सपीरियंस से ही डिसाइड कर सकते हैं।
3: सही बात है।
4: तो वो एक्सपीरियंस जो हमारी बीमारी अगर ठीक हो रही है, तो वो जो गाइड है वो हमारे लिए ठीक है।
3: तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि झुकना कमजोरी नहीं है और सही वक्त पर निकल जाना हार नहीं है, लेकिन असली समझदारी इसमें है कि हमको ये पता चले कि कहाँ झुकना और कहाँ निकलना है।
4: What I'm trying to say is, दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है जो हम कह रहे हैं कि हम उस यात्रा पर निकल जाते हैं और फिर रियलाइज करते हैं कि ये हमारे लिए वर्क करता है कि नहीं। उससे पहले भी जो एक जज करने का फैक्टर होता है, मतलब राइट रॉन्ग को जज करने का परख शक्ति जिसको हम कहते हैं, एट अ वाइब्रेशनल लेवल ऑल्सो। कभी कभी अगर आपके मन के अंदर क्लटर नहीं है, तो आप सामने वाले के वाइब्रेशन से भी आपको पता चल जाता है कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। कितनी बार हम लोग भी कह देते हैं ना, नहीं ये तो हमें ढोंगी लगता है, ये तो हमें रियल नहीं लगता है, ऑथेंटिक नहीं लगता है। क्यों, वो बोल बहुत अच्छा रहे होते हैं, पर वो चीज उनके संकल्प में नहीं है, उनके एक्शंस में नहीं है, उनकी एनर्जी में नहीं है, तो आपको वो कन्विंसिंग नहीं लगता है।
3: सही बात।
4: लेकिन अगर वो उनके जीवन में भी उतरा हुआ होगा
3: तो फिर आप फील भी करेंगे।
4: आप फील करेंगे, उनके शब्दों के अंदर भी एक अलग प्रकार की अथॉरिटी होती है।
3: सही बात।
4: नम्रता भी होती है, लेकिन साथ साथ अथॉरिटी भी होती है, क्योंकि वो बोल कन्विक्शन से निकल आते हैं। तो पहली जजमेंट, पहली परख शक्ति जो है वो व्यक्ति की एनर्जी से करनी चाहिए, और फिर तो पाथ पर चल करके पता चल ही जाता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर जो इंसान आपको गाइड कर रहा हो वो ही गलत दिशा दिखाने लगे तो ऐसी सिचुएशन में सही फैसला कैसे ले, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे लोगों के संगत में आ जाते हैं जो शायद आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि शुरू में आपने जैसे कहा हमारे पास डेटा और इन्फॉर्मेशन ही होता है, विजडम नहीं होता है। विजडम किसी का गाइड करने पर धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस से आता है। अब जो आपको गाइड करने वाला हो, कई बार हमने देखा है बहुत सारे हेड्स ऑफ रिलीजियस सेक्ट्स हैं या बहुत सारे बहुत ज्ञानी लोग हैं, वो गलत रास्ते पे भी निकल जाते हैं। तो आपको गाइड करने वाला ही अगर आपको गलत दिशा ले जाए, हमें कब समझ में आना चाहिए कि भैया अब इनको फॉलो नहीं करना चाहिए, अब निकल लेना चाहिए?
4: देखो, जब दवाई खा रहे हैं तो बीमारी ठीक होनी चाहिए। तो अगर आप किसी की भी गाइडेंस पर चल रहे हैं लेकिन बीमारी तो आप ही की है ना अंदर में, वो बीमारी चाहे विकारों की है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आप कुछ तो खत्म करने के लिए आए हैं, कोई तो बीमारी, क्योंकि ये बीमारी कोई बाहर फिजिकल बीमारी के तो बात नहीं चल रही है। इट कुड बी फियर, इट कुड बी वरी, इट कुड बी एंजाइटी। बीमारी ठीक हो रही है तो दवाई ठीक है, बीमारी ठीक नहीं हो रही तो वो दवाई देने वाला चाहे कोई डॉक्टर कितना भी फेमस हो या कितने भी उसने अवार्ड जीते हों, पर वो आपके लिए नहीं ठीक है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: क्या सरेंडर करना ही आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है? आइए इस बात को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक बार हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा था दैट सरेंडरिंग इज द हाईएस्ट वर्च्यू, और मैंने देखा है कि कोई भी शैली हो, कोई भी आप संगीत हो, रिश्ता हो, स्पोर्ट्स हो, वो कंप्लीट सरेंडर मांगता है। लेकिन कई बार इंसान को ये समझ में नहीं आता कि सरेंडर कहाँ करना और रिजिस्ट कहाँ करना है, क्योंकि हमें यह भी सिखाया जाता है कि हर चीज में सरेंडर करना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल एडिक्शन है तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव चीजों में आप रिजिस्ट करो, पॉजिटिव चीजों में आप सरेंडर करो। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे रास्ते आते हैं जहां आपको ये समझ में ही नहीं आता कि अच्छा है या बुरा है, क्योंकि आपको गाइड करने वाले आपको ये सीख नहीं देते। तो ये कैसे समझा जाए कि कहां सरेंडर करना है और कहां रिजिस्ट करना है?
4: सी, पहले तो राइट और रॉन्ग की जो समझ है उसमें सरेंडर रिजिस्ट यूज नहीं होता, वो तो एक इंटेलेक्ट की क्लैरिटी है कि ये राइट है कि रॉन्ग है। ना आफ्टर मूविंग ऑन द पाथ ऑफ राइट, अब आप कभी कभी तो जहां तक आप कंट्रोल कर सकते हैं आप कंट्रोल करते हैं, व्हाट इज इन योर कंट्रोल। ना जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आउटकम है, आप वहां सरेंडर करते हैं।
3: जी बिल्कुल।
4: लोग कहां सरेंडर कर पाते हैं? जब आउटकम आता है तो ये ऐसे होना चाहिए था, ये मुझे मिलना चाहिए था, ये क्रेडिट इसको चला गया। तो जो चीजें कंट्रोल में नहीं है वहां सरेंडर, हैविंग कंप्लीट फेथ कि इसके अंदर बेनिफिट है, और जो आपके कंट्रोल में है भले उसको कंट्रोल करें।
3: तो इसमें एक ब्यूटीफुल जापानीज ट्रेडिशन है, टेक्निक बोल सकते हैं, उसको कहते हैं शूहारी, और इसके 3 स्टेप्स होते हैं। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो शू होता है वो स्टेज जहाँ या वो लेवल जहाँ पे आप अपने गुरु की हर बात माने, जैसे कराटे किट भी अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी वो बेसिकली वो शू का ही तरीका है कि भाई जो बोले बिना क्वेश्चन किए आप उनकी बात माने, तो वो होता है शू। हाँ होता है जब आप नियमों को तोड़ना सीखते हैं और अपना तरीका जो है वो खोजते हैं। तो कई बार संगीत में भी होता है, हम सीखते सीखते अपनी एक सुर निकाल लेते हैं, अपना एक घराना बना लेते हैं, तो कई बार हम देखते हैं। और री जो होता है वो ये होता है कि आप गुरु से भी आगे निकल गए और आपने अपनी शैली रच ली। तो ये शूहारी ब्यूटीफुल जापानीज ट्रेडिशन है। तो पहले है सरेंडर, फिर है एक रूल को तोड़ना, और तीसरा ही अपना ही रास्ता निकाल लेना।
4: बट ये अपने आप होता है, इट इज नॉट समथिंग दैट यू डू कॉन्शियसली। आपको गाइडेंस भी लगती है,
3: बिल्कुल,
4: वो गाइडेंस ही आपको स्ट्रेंथ देती है उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, और तो ही आपका कुछ एक जो फल आप कहें या जो छवि बन करके निकलती है। बट इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस दैट हैपेंस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं बल्कि ईगो को छोड़कर सच को अपनाना कैसे होता है, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक कमाल की किताब है द सरेंडर एक्सपेरिमेंट, ये किसने लिखी है मुझे याद नहीं आ रहा, बट इट इज़ बेस्ड ऑन अ पर्सन जो बिलियन डॉलर कंपनी बाद में खड़ा करता है, लेकिन वो बिलीव करता है कि सरेंडर का मतलब हार नहीं होता, और बहुत कमाल की ये किताब है। तो हर बार सरेंडरिंग टू द फ्लो इज नॉट नेसेसरली लूजिंग आउट टू ऑप्शंस।
4: सरेंडर इज द बिगेस्ट वर्च्यू। सरेंडर में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, सरेंडर वीकनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। सरेंडर का मतलब है कि यू आर नाउ रेडी टू, जो हायर पावर या हायर प्लानिंग या डिवाइन प्लानिंग है, आप उस चीज को भी समझ करके अपनी डिजायर को सरेंडर कर रहे हैं, सो दैट यू कैन बोथ अलाइन, और जो एक्चुअली बेस्ट है वो होगा और आप उसके लिए तैयार है। नहीं तो सरेंडर के बीच में हमारी डिजायर आ जाती है, आई वॉन्टेड टू बी डन माई वे, माई वे इज ऑल्सो गुड, बट वॉट is the divine planning is going to be the best.
3: Very nice.
4: तो surrender तो बहुत जरूरी है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा with विशाल सेठिया and ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया only on मिर्ची it's hot।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अगर आप भी मिलेनियल जनरेशन से हैं, तो ये बात आपके नजरिए को बदल सकती है। आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, अद्वैत का जो सवाल है, मुझे कभी कभी लगता है कि वो जो 80s 90s में जो बच्चे बड़े हुए ना, वो कभी कभी बहुत ट्रैप्ड फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे जनरेशन में ऐसा होता था, लेकिन आज के बच्चे बोलते हैं आपका जनरेशन है नहीं। और उनके लिए वो साधन नहीं रहे, क्योंकि जिंदगी बहुत बदल गई है। एक तो ज्वाइंट फैमिली नहीं रही, और दूसरी बात है कि बहुत सारा इंटरनेट आके, सोशल मीडिया आके, उन्होंने बहुत कुछ अलग कर दिया। तो कभी कभी वो जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आई थिंक मिलेनियंस के लिए बहुत दिक्कत है, बिकॉज दे आर द लास्ट जनरेशन जिन्होंने अपने पेरेंट्स को भी सुनी और अपने बच्चों को भी सुन रहे हैं।
4: आई थिंक मिलेनियंस प्रॉब्ली क्योंकि उन्होंने कंट्रोल को एक्सेप्ट कर लिया था, पर आज अगर वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो वर्क नहीं करता है। आई थिंक उन्होंने भी जब कंट्रोल एक्सेप्ट किया था तो वो भी सफोकेट होते थे, बट कम्युनिटी सिस्टम बहुत था,
3: इसलिए वो बैलेंस आउट हो जाता था।
4: हाँ, क्योंकि क्वेश्चनिंग थी ना, चाहे आप जॉइंट फैमिली की बात कर रहे हैं, चाहे फ्रेंड सर्कल की बात कर रहे हैं। फ्रेंड सर्कल कितनी बड़ी क्वेश्चनिंग थी, समझो आपके पेरेंट्स ने कुछ आपको कह भी दिया, शाम को 5-10 दोस्त इकट्ठे हुए, अपना फ्रस्ट्रेशन उन्होंने निकाला, एंजॉय किया, खत्म हो गया।
3: वो हमारा सोशल मीडिया था,
4: वो हमारा सोशल मीडिया था। तो फ्रेंड्स की क्वेश्चनिंग थी, ग्रैंड पेरेंट्स की क्वेश्चनिंग थी, जॉइंट फैमिली की थी। अब क्या हो गया है, वो कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं है। बच्चा अकेला अपना सोशल मीडिया के साथ बैठा हुआ है।
3: हम बहुत वीक हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास
4: बहुत वीक हो गए,
3: वो इमोशन निकालने की कोई जगह नहीं है।
4: चलो कम से कम पहले, वैसे तो क्रिएट नहीं करना चाहिए, पर पहले कम से कम सप्रेस नहीं करते थे। दोस्त आपस में मिले, हंसे, खेला या किसी और चीज में इन्वॉल्व हो गए। एक्टिविटीज कितनी थी, कितना आप स्पोर्ट्स खेलते थे या आप कुछ ऐसा करते थे जो आप एंजॉय करते थे, जो आपके लिए एक मेडिटेशन जैसा ही हो जाता था, चाहे वो डांस है, गार्डनिंग है, कुकिंग है। तो वो बहुत चीजें थी जिसके कारण वो कंट्रोल का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं हुआ। आज हम वो चीज नहीं कर सकते। आज जब आप वो चीज करते हैं तो बच्चे तो डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए, कोई कोई तो सुसाइड तक कमिट कर रहे हैं। पिछले दिनों में ये रियल है, 6-8 महीने पहले की बात होगी, एक पेरेंट ने अपने बच्चे को केवल डांट दिया किसी बात के लिए। वो लेट आया था, वो बच्चा छत पर गया, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ इसी बात पे झगड़े जा रहे हैं, आपने क्यों बोला, आपको समय नहीं बोलना चाहिए था। अब हम कहेंगे इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है, एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को कुछ ना कुछ कभी ना कभी कह देते हैं, पर अब वो इतने इमोशनली वीक हो गए हैं कि वो एक्सट्रीम स्टेप उठा रहे हैं, तो इसलिए अब कंट्रोल काम नहीं करता। तो जब कंट्रोल काम नहीं करता तो फिर दूसरा तरीका क्या है, इन्फ्लुएंस करना, इंस्पायर करना, एक्सेप्ट करना। तो इधर वो अपने इमोशनल स्ट्रांग बनाए तो आपके तरीके कंट्रोल वाले काम करेंगे, अगर वो इमोशनली वीक हैं तो फिर हम वो तरीका यूज नहीं कर सकते भी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची It's hot.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, काजल ने एक सवाल लिख के भेजा है कि मैं 25 साल से पढ़ा रही हूँ, यानी कि टीचर है वो, और मेरे पिता की बीमारी के कारण मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। अब सास बिस्तर पर है, 1.5 साल हो गया है। अब फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि फिर से स्कूल ज्वाइन करूँ या नहीं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, बस मन बहुत अशांत है।
3: मन इसलिए अशांत है क्योंकि कई बार डिजायर होती है ना, गलत नहीं है, आप पढ़ा रहे हैं, गलत नहीं है, पढ़ानी अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है वो देखना पड़ता है। अगर इस समय आपको लगता है कि प्रायोरिटी अपने ओल्ड पेरेंट्स की केयर करना है
2: जी,
3: और फाइनेंशियल नीड भी नहीं है, तो वो करना चाहिए और अपने मन को समझाना चाहिए। मन जो बार बार कहता है मैं तो कुछ

0: नहीं कर रहा, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो मजा नहीं आ रहा. बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ समबडी हु इज ऑन द बेड इज नॉट इजी.
1: एब्सोल्युटली,
0: यू आर ऑल द टाइम गिविंग,
1: इट्स अ लॉट ऑफ वर्क.
0: मतलब फिजिकल वर्क भी है, लेकिन जो बीमार है वो चिड़चिड़ा भी होता है, कुछ ना कुछ बोल भी देता है. आपको फिजिकली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है देने के लिए. ये कहना इजी है, बट टू बी अ केयर गिवर,
1: सही बात है,
0: केयर गिवर के लिए फिजिकली भी स्ट्रांग होना, फिर कंपैशनेट भी होना, लविंग भी होना, पेशेंट भी होना, वो हो नहीं पाते. तो जो पेशेंट है उसके व्यवहार का, उसके डिस्टर्बेंस का टोल हो जाता है.
1: जी बिल्कुल.
0: अगर हम अपने को समझाएं और उस चीज को बहुत प्यार से करें, तो ये भी पक्की बात है कि जब आप किसी दर्द वाले व्यक्ति की सेवा करते हैं, तो उससे जो दुआएं मिलती हैं, वो भी दुआएं आप कहीं और नहीं कमा सकते हैं. तो अगर ये आपकी प्रायोरिटी है, आप इसको एक्सेप्ट करें, अपने मन को समझाएं, बहुत खुशी से, बहुत प्यार से उनकी सेवा करें और इस फेस को भी एंजॉय करें. ये आपको समटाइम्स वी लर्न द मोस्ट इन दीज काइंड ऑफ फेजेस.
1: एब्सोल्युटली, वेरी नाइस. और काजल जी, मैं आपको एक राय दे सकता हूँ कि खलील जिब्रान, जिसको खलील गिब्रान भी कहते हैं, उन्होंने किताब लिखी थी प्रॉफिट. और प्रॉफिट में बहुत कमाल की चीज़ कहते हैं दैट वर्क इज लव मेड इनविजिबल. और इस पे बहुत कमाल का चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही शायद वर्क है, वो जरूर पढ़िएगा, तो बहुत सारी आपकी जो दुविधाएं हैं वो शायद निकल जाएंगी.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का, उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: सिस्टर, कुशल का एक सवाल आया है, वो लिखते हैं कि मुझे बहुत गिल्ट होता है, क्या करूं?
4: गिल्ट वैसे देखो बहुत अच्छा नहीं होता, एक सेकंड की रियलाइजेशन ठीक है। समझो आपने कोई किसी से आपका कोई गलत हो गया, कोई गलती हो गई, व्यवहार में गलती हो गई, तो वो एक सेकंड की रियलाइजेशन तो जरूरी है कि आप दोबारा उस चीज को ना करें।
3: सही बात।
4: लेकिन अगर आप गिल्ट में चले जाते हैं, जो कहीं रिलीजन में उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, रिपेंट करना, गिल्ट करना, पर उसकी सोच कैसे होती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने, एक माँ ने अपने बच्चे पर ही हाथ उठा दिया, फिर उसको बहुत गिल्ट हो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर वो है तो नेगेटिव थिंकिंग ना, तो उसको डिप्लीट करेगी। रियलाइजेशन होना जरूरी था कि मेरा जो ये एक्ट है वो गलत है और मुझे दोबारा नहीं करना, लेकिन कॉन्स्टेंटली उस चीज में जाना वो आपकी सोल पावर को डिप्लीट करता है। तो अपने को उससे बाहर निकाले, हो गया, बीती सो बिंदी, फुल स्टॉप, आगे से ध्यान देंगे।
3: इसमें माया एंजेलो जो अमेरिकन पोएट और एक्टिविस्ट है, उन्होंने कमाल की एक बात कही थी और मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि डू द बेस्ट अंटिल यू नो बेटर, एंड व्हेन यू नो बेटर डू बेटर।
4: When you know better, you do better. Ignorance is not a crime. जो उसकी complete है, आपको पता ही नहीं था। लेकिन इनका जो कई बार गिल्ट होता है ना, हमें पता होता है, हम अवेयर नहीं होते, उस समय हम माइंडफुल नहीं होते।
3: लेकिन कई बार क्या, वो गिल्ट चलता रहता है, तो उसको हटाने के लिए क्या, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करें?
4: जैसे अगर किसी को गिल्ट है, आपके परिवार में किसी को गिल्ट, किसी बात का ही गिल्ट है, तो आप उनको क्या कहते हैं?
3: कोई बात नहीं, हो गया, रहने दो, अब आगे से नहीं करना।
4: इतना ही सिंपल होता है, यही अपने को कहना होता है,
3: बस
4: इतना ही। बट ये रिपीट मोड पर कहना होता है। जैसे आप उनको कहेंगे, पर ये जो सेल्फ काउंसलिंग या सेल्फ टॉक बहुत पावरफुल चीज है।
3: सही बात।
4: बार बार गिल्ट आती है, फिर आप अपने को कहते हैं मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, मैं वर्क इन प्रोग्रेस हूँ, हो गया, कम से कम मैंने रियलाइज तो किया, मैं आगे से ध्यान दूंगा, आई विल ट्राई टू बिकम बेटर। फिर वो चीज आए, फिर आप रिपीट करते जाते हैं टिल यू कम आउट ऑफ इट।
3: वेरी नाइस।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और मिर्ची मॉर्निंग्स जो है ऑफिशियली ऑन एयर है। अगर फिलहाल तुम ट्रैफिक में अटके हो, ट्रेन में लटके हो या फिर किचन में चाय और जूम मीटिंग्स दोनों एक साथ मैनेज कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हैशटैग रिस्पेक्ट। लेकिन एक प्रॉमिस करो कि स्ट्रेस को बैक सीट में आज बिठा दोगे, क्योंकि अगले कुछ घंटों तक सिर्फ और सिर्फ गुड मिर्चीदार वाइब्स होनी चाहिए। मस्त बॉलीवुड के बैंगर्स मैं तुम्हारे लिए प्ले करने वाली हूँ, देसी फील्स रहेगा क्योंकि हम देसी लोग बातें करने वाले हैं और साथ में काफी सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जो तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से करते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम योर BFF। वैसे देसी लोग दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, एक चीज कभी नहीं बदलती है, फ्रिज में लेफ्ट ओवर्स देखकर हम सब कहते हैं यार ये कल और ज्यादा टेस्टी लगेगा। ऐसा तुम भी करते हो क्या? मैं तो जिस दिन खाना ऑर्डर करती हूँ उसे फ्रिज में रख के उसके अगले दिन उसे खाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। आई डोंट नो इफ यू डू दैट और नॉट, बट आई लव लेफ्ट ओवर बिरयानी और लेफ्ट ओवर करीज। अच्छा, आज का मिशन काफी सिंपल है, थोड़ा सा हंसेंगे, थोड़ा सा हंसाएंगे, थोड़े से गाने सुनेंगे और फुल ऑन मिर्चीदार वाइब्स फैलाएंगे। फटाक से मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम पर, और मेरा फोन नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। यू कैन व्हाट्सएप मी हियर एंड राइट नाउ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: SHG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और तुम सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो टाइम मशीन को रिवर्स गियर में डालते हैं। सबसे पहले चलते 1806 में, जब द होली रोमन एम्पायर ऑफिशियली खत्म हो गया था। एंड फिर 1825 में बोलिविया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पेन। और 1962 में जमैका ने भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। 1945 में आज के दिन हिस्ट्री का एक बहुत ही इमोशनल चैप्टर था। हिरोशिमा पर पहली बार वॉर टाइम में एटॉमिक बॉम्ब यूज हुआ था। एक ऐसा दिन जो दुनिया को याद दिलाता है कि पीस की वैल्यू क्या होती है। 1965 में अमेरिका में वोटिंग राइट्स एक्ट साइन हुआ, जिसने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन वोटिंग को बैन कर दिया। और इंटरनेट लवर्स 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने दुनिया की फर्स्ट एवर वेबसाइट पब्लिश की। सो टेक्निकली उसी की वजह से आज तुम और मैं मीम्स देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और रात को 2 बजे सिर्फ 5 मिनट के नाम पर रील्स देख देख कर सोना भूल जाते हैं। वैसे सोशल्स पर भी हम इसीलिए मिले हैं। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची का
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Spider-Man, brand new day आ गई है and for God's sake, please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake, किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have free life cycle.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो अब देखते हैं कि आज का वेदर का हालचाल क्या है, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। देखो, सुबह 9 बजे से सनशाइन अपनी एंट्री मारने वाला है विद 81 डिग्री फारेनहाइट। 10 बजे थोड़े से पासिंग शावर्स का चांस बन सकता है, अगेन सिर्फ 20% का। तो आज अम्ब्रेला ले जाए या नहीं इसका सस्पेंस बनाने की जरूरत नहीं, कैरी इट विथ यू इन केस यू नीड इट। सुबह से टेम्परेचर 75 डिग्री फारेनहाइट से लेकर फ्लक्चुएट करने वाला है 96 डिग्री फारेनहाइट तक, और 11 बजे तक वेदर हो जाएगा पार्टली सनी विथ वार्म 86 डिग्री फारेनहाइट। ओवरऑल आज का हाई रहने वाला है अराउंड 93 डिग्री फारेनहाइट तक, और रात को लो जाएगा 75 डिग्री फारेनहाइट तक। ह्यूमिडिटी दिन भर 60 से लेकर 72% तक के बीच रहने वाली है, और साउथ वेस्ट से विंड 5 to 8 miles per hour आने वाली है, और यूवी इंडेक्स आज के लिए है 7। इसका मतलब है सनग्लासेस और सनस्क्रीन दोनों को आज एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ेगी, यानी कि बाहर जाते टाइम कैरी योर सनग्लासेस विथ यू, आल्सो योर सनस्क्रीन विथ एसपीएफ 50++++, इसे लगाना बिल्कुल मत भूलना। एंड यू कैन रीअप्लाई आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स, एंड साथ में कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, हैव अ लॉट ऑफ वाटर। और आज थ्रू आउट द डे टेम्परेचर 93 डिग्री फारेनहाइट से लेकर 96 डिग्री फारेनहाइट के जैसा फील हो सकता है, और आज बहुत ही कम लेकिन चांसेस हैं हल्की हल्की बरसात के। और साथ में अपने मिर्ची वाइब्स बनाए रखो, मुझे यानी कि प्रिसिला को अपने साथ चिपकाए रखो, मुझसे बातें कर सकते हो तुम इंस्टा और एक्स पर, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी टाइम है मिर्चीदार झमाझम बैंगर्स का, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।